अयना वजमंत जनैगम आई वद्रे मियो सान फ्रांसिस्को बेरदोन लो सेन्योर आई अल्मा लुइसा दियोस के ते बेरदोनी.